0: Breaker Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place.
4: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963

0: ये है
1: Leica Radio.
2: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: साउथ हॉल ट्रेवल
6: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales ऑन 02071321458 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk।
8: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड़ हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुक्ति छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खा

0: की नजर
1: जहां जिंदगी वहां सार्थक
2: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड सेंटोसा आइलैंड बाटू केव्स जेंटिंग हाइलैंड्स बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन फ्लाइट्स फोर स्टार होटल्स इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846
3: गणपति बाप्पा के आगमन से घर आएंगी खुशियां और सुख समृद्धि से सुनहरा बनेगा आने वाला हर पल
4: लेट्स सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस ओकेजन विद डिलीशियस एथनिक नमकीन वैरायटीज ऑफ जयमिन स्नैक्स अलोंग विद इट्स खाकरा मैंगो पल्प सोन पापड़ी एंड पिकल्स
3: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू गणपति बाप्पा मोरिया
5: द वेट इज फाइनली ओवर
6: अब सही सुर लगा रहे मुमताज
5: मिर्जापुर इज कमिंग टू द बिग स्क्रीन
7: गद्दी ना तो विरासत से मिलती ना सियासत से
5: पावर बेंच और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल
8: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर
5: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स ओनली वन डे टू गो मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग टुमारो इन योर नियरेस्ट सिनेमास
7: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी दूसरा कोई नहीं खुलेगा
9: 11plusteacher.co.uk offers 11plus tuitions and 11plus mock exams, face-to-face and online. WhatsApp 07835929287 or visit 11plusteacher.co.uk.
10: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavour. Hira, king in quality, king in taste.
11: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. That will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
12: Har meal ko banao thoda aur special with Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. And right now, make your shopping grand with these special offers at independent retailers. 5 kilograms, just $8.96. 10 kilograms, only $16.96. And the big 20 kilograms pack, just $29.96. Perfect for everyday meals, family get-togethers or har special celebration. Hurry, offers ending soon. Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. Make everyday grand.
13: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.
14: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: से
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रो
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल Atto protected.
5: Oji samosa lovers, tusi ready ho? 5th September nu aa gaya World Samosa Day. The celebration hovegi full desi style naal, Ashoka samosas de naal. Punjabi, Lahori ya cocktail, har mood te har mauka layi samosa hi samosa. Deep fry karo, air fry karo ya bake karo, bas garma garma Ashoka samosa zarur chakho ji. Kyunki samosa hove Ashoka da te swad hove full desi. Le aao Ashoka samosas now ji te manao World Samosa Punjabi style.
6: The wait is finally over.
7: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
6: Mirzapur is coming to the big screen.
8: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
6: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
9: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
6: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Only one day to go. Mirzapur the movie, releasing tomorrow in your nearest cinemas.
8: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Adil ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
10: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
12: Hi, this is Chitra Nivas Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
13: The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Leica Radio.
14: The Diamond Track of the Hour is brought to you by Malabar Gold and Diamonds.

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक। Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
2: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLCs apply.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
4: साफो ट्रैवल Auto protected.
5: Oh geez, samosa lovers, tusi ready ho? 5th September nu aa gaya World Samosa Day. This celebration hovegi full desi style naal, Ashoka samosas de naal. Punjabi, Lahori ya cocktail, har mood te har mauka layi samosa hi samosa. Deep fry karo, air fry karo ya bake karo, bas garma garam Ashoka samosa zarur chakho ji. Kyunki samosa hove Ashoka da te swad hove full desi. Leo, Ashoka samosas now ji, te manao World Samosa Day. Punjabi style.
6: Dubai is coming to London.
7: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
6: At London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
7: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
6: Hurry and register now
7: at nknpropertyexpo.com.
6: Your next investment could begin here.
7: Official Radio Partner, Leica Radio.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
10: Al Noor, Purana Baitamat Naam. Nayi range ke saath. Premium pulses. Pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak. Aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor, taste the difference.
11: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
12: 2 days to go. The NKN Dubai Property Expo, London Hilton, Park Lane. Supported by Leica Radio Network.
13: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler, committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: और रेडियो के जरिए हम भी आपके ही करीब रहते हैं कुमारदा और साधना सरगम की प्यारी सी आवाज ऑन दिस वन सिमिलर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव गोइंग आउट टू दिस वन जस्मिन लॉट्स ऑफ लव गोइंग आउट टू यू एज़ वेल सेइंग प्यारी प्यारी रेडियो वाले क्या गाने हैं हेमा सेइंग वाओ व्हाट अ स्टार क्या बात है वाज अ बिग सलाम नमस्ते टू यू एज़ वेल वी गॉट सुपर फैन इन द हाउस सेइंग रॉकिंग प्लेलिस्ट रेडियो वाले लुकिंग फॉरवर्ड टू 90s एट नाइट हैप्पी थर्सडे रागिनी लॉट्स ऑफ लव गोइंग आउट as well Devendra ji lots and lots of love to you and Chirag lots of love going out to you as well
1: SBI UK Money Talk send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch
0: so £1 in British sterling is giving up to 127.15 Indian rupees but remember transfers online in store or via the app
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 of British sterling tonight gives you up to 127.97 Indian rupees, 375.79 Pakistani rupees, 444.01 Sri Lankan rupees, 166.27 Bangladeshi takas, 89 Afghanis and $1.35 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s.
0: And let me remind you, the competition for Ashoka will be closing in the next 3.5 minutes. One WhatsApp message with your full name and your favorite Ashoka samosa.

0: हाय हाय,
1: उसकी नजर
0: नजर से नजर मिलाई जा रही है। झांझरिया की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आई से लव दिस वन सारी यादें ताजा कर दूंगी।
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Like a radio.
2: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: time for Radio Wally to take you out of this world with a Lazy Lounge special.
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
2: travelhub, best service with unbeatable price
1: at all protected.
2: visit travelhubworld.com.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it in a London theatre near you. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Desi Panto fun for all the

0: Kicker Radio. One performer.
1: Countless personalities.
0: A whole universe of entertainment.
1: Sunil
2: Grover, live UK Tour 2026.
0: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
0: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
7: Cutthroat Ke Khiladi.
8: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk. The sounds of love in London.